0: 98.5, 2000 FM, broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Thai.
1: Namaskar, Sydney. Namaskar, Sydney. Suprabhat. Jai Mithila, Jai Maithili, Jai Maa Bhagwati. अहाँ सब श्रोता के बहुत बहुत स्वागत है अपन कार्यक्रम मिथिला गुंज में. यू आर लिसनिंग टू 2000 98.5 FM. आ हम छी शिशिरेंदु झा. हर रविवार के तरह आइयो हम सब उपस्थित छी 8 बजे से 9 बजे तक. एक घंटा समर्पित करे छी अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन संगीत, अपन कथा, अपन लोक के आवाज के. प्रारंभ करे छी मौसम के जानकारी से. सिडनी में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड. मौसम कनिक मनिक ठंडा बुझा रहा है. ह्यूमिडिटी

0: नेपाल के संगे मिथिला गुंज हम सब छी और हमर सबके प्रार्थना में नेपाल गुंज हमर सबके प्रार्थना में नेपाल और ओतय के त्रासदी से जे व्यक्ति सफर कर रहल छथि हुनका सब लेल एकटा श्रद्धांजलि अछि। भगवान प्रत्येक ओहि व्यक्ति के शक्ति प्रदान करथिन जे एहि त्रासदी से इम्पैक्टेड भेल छथि। आओ तो आगा बढ़े छी, आइ के एपिसोड बहुत स्पेशल अछि। आइ हम केवल एकटा एक इवेंट के बात नहीं करै छी, आइ बात करब हम एकटा संकल्प के। सिडनी में जे एकटा इवेंट होवय वाला अछि ओहि इवेंट के अपन बच्चा सबके मिथिला किया चिन्हबाक चाही, एहि मल्टी कल्चरल ऑस्ट्रेलिया के अपन महान जे विरासत छै हेरिटेज छै एहिसँ किया परिचय करबाक चाही। आइ के विषय अछि मिथिला महोत्सव 2026 एंड दुर्गा पूजा। 17-19 अक्टूबर 2026 क्वाकर हिल्स कम्युनिटी हॉल सिडनी में माँ भगवतीक आराधना संग 3 दिनक मिथिला महोत्सव आयोजित भऽ रहल अछि। एहिसँ पहिने की आगाँ बढ़ी अहाँ सबके याद दिया दी, ए प्रोग्राम के अहाँ सब देख सकै छी और यदि कोनो अहाँ सबके प्रश्न अछि तो अवश्य भेजू 0426-399-461। हमर सबके वेबसाइट अछि जतय प्रोग्राम के विषय में अहाँके जानकारी देख सकै छी, www.mithilaculturalsociety.au। आइ हमरा सब संगे 3 टा गेस्ट आर छथि। गेस्ट के नाम छै नवनीत जी। नवनीत जी नमस्कार।
1: नमस्कार सब गोटक।
0: संध्या झा नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: खुशबू झा नमस्ते।
3: नमस्ते। हेलो एवरीवन।
0: तो नवनीत जी पहिल सवाल तो बहुत सिंपल है, हम सब सिडनी में रहे छी और मिथिला हजारों किलोमीटर दूर है, तखन एतय मिथिला महोत्सव के करय के की आवश्यकता पड़े? व्हाट आर वी रियली ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस महोत्सव?
1: बड़ नीक क्वेश्चन पूछलहुँ। पहले तो हमू अपन संवेदना जनबै छी जे नेपाल में त्रासदी भेल हन और हमर सबके विशेष और गुड लक छै जे ठीक भए जाए जल्दी से, इस जे भी त्रासदी भेल हन और रेस्क्यू ऑपरेशन सब चलि रहल छै। सो कंडोलेंसेस टू द फैमिली जे सब अपन परिजन के आहत भेलखिन हन या कोनो परिजन हुनकर परिवार से बिछड़ गेलखिन हन। तो अहाँ के क्वेश्चन का आंसर जे कहलिए मिथिला महोत्सव, हमरा सब ले मिथिला महोत्सव केवल एंटरटेनमेंट नहीं छै, दुनिया के अहाँ कतौ रहो दुनिया में भाषा संस्कार पर्व त्यौहार गीत संगीत खान पान ई सब ओवरऑल जे आइडेंटिटी बनबे छै मिथिला के, ई सब से ई सब ज़्यादा ज़रूरी छै। हमर सबके जेनरेशन तो हम सब देखलिए मिथिला के एक्सपीरियंस के लिए मिथिला के फील के लिए, जेना कहलों जे भाषा संस्कार पर्व त्यौहार सब एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन आब हमर सबके जे रिस्पॉन्सिबिलिटी बने छे जे हमर सबके अगला जेनरेशन जे एथिन या छथिन उनका सबके ई कहना है जे हम सब मिथिला से छी, सिर्फ एते पर्याप्त नहीं हेतै, तो वी हैव टू लेट देम एक्सपीरियंस मिथिला कल्चर को उनका सबके देखवा पड़ते, उनका सबके समझावा पड़ते, उनका सबके एक फील दियो पड़ते। तो ये सुननाए खेनाए जे हमर सबके पहिरे छे जे हमर सबके पहनावा ओढ़ावा छे त्यौहार छे हर संस्कार छे, ते तीज त्यौहार मिथिला में जानबे करे छे बहुत तीज त्यौहार होइ छे, शादी उपनयन और हजार तरह के चीज छे, तो उस सब उनका सबके बतेना है एक्सपीरियंस करेना और उनका सबके जोड़ना है जो उस सब पार्टिसिपेट करें में और वहीं से अपन मिथिला कल्चर के एनरिच करें। तो ई हमर सबके मेन मुद्दा छे मिथिला महोत्सव का।
0: वाह बहुत बढ़िया बात कहलिए, एक्सप्लेन ने एक्सपीरियंस। तो संध्या जी जे मिथिला शब्द क्योंकि ऐसा अहाँ सब सबगोटे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड छी, मिथिला सब सुनते पहल भावना अथवा पहल मेमोरी की अबैत अछि बचपन के किछु मेमोरी हेबाक चाही जे जे की छै खुशी जे अगर अहाँ एहिपर किछु दू शब्द बाजि सकबै?

0: अगर हम अपन चाइल्डहुड मेमोरीज में चल जाओ, मतलब मैं अगर अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में जाऊँ तो मुझे मिथिला मुझे घर जैसा लगता था, क्योंकि हम वेकेशंस में घर जाते थे इंडिया, सॉरी मतलब हम बिहार जाते थे, और उस टाइम पे मुझे पूरा बिहार ही मिथिला लगता था। मुझे लगता था, मतलब मेरे पापा लोग बोलते थे मिथिलांचल, तो हम एक ट्रेन भी उस वक्त चलती थी, आई डोंट नो अभी चलती है या नहीं, मिथिलांचल एक्सप्रेस। तो हम जब जाते थे ना, तो पापा बताते थे कि ये जो पूरा एरिया है इसको मिथिलांचल बोलते हैं, तो मुझे लगता था पूरा बिहार ही मिथिलांचल है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो जो मिथिला में रहता है वो मिथिलांचल में वो इंसान आता है, तो इट्स लाइक होम, क्योंकि घर जाके बहुत सारी स्टोरीज मिलती थी, पता चलता था कि अच्छा हमारा, क्योंकि मैं कलकत्ता में रहती थी तो बंगाली कल्चर बहुत क्लोजली देख रही थी, तो मुझे लगता था कि जब बंगाल में लोग बंगाली बोल रहे हैं तो हम जब बिहार जा रहे हैं तो हमारा लैंग्वेज ऐसा क्यों नहीं है कि हम भी मतलब हमेशा हर वक्त वो लैंग्वेज यूज़ कर सकें, हम क्यों हिंदी यूज़ करते हैं। तो बिकॉज क्योंकि छोटा जगह था तो बोलते थे पापा, लेकिन अब सिडनी आके मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे फ्रेंड्स हैं और हम मैथिली बोलते हैं, तो
1: बहुत बढ़िया है। और बचपन से हमार सब हर व्यक्ति के याद जुड़ल है मिथिला से, मैथिली से, और वही ट्रेडिशन के हम सब एतः स्थापित करे के प्रयास कर रहा छी, जे कि एक बहुत निक बात है। संध्या जी, अहाँ एज ए यंग जनरेशन के पर्सपेक्टिव से की बुझे छे जे एहन फेस्टिवल किया वास्तव में किया हेबाक चाही, कोनो आइडेंटिटी क्राइसिस है तब हमर सबके, या कोनो तरह के अहाँ सोचे छे जे आवे वाला जनरेशन में तरह के सेंस डेवलप भेनाय आवश्यक छे, अहाँ के किए पर विचार है?
2: वेल, हमरा लागे है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज से कनेक्टिविटी, स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल नेशन है, बहुत से कल्चर्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी जो यंग जनरेशन है स्पेशली जो मिथिला की साइड की है, तो दे आर यंग एंड वो ऑलरेडी अपने एक देश से डिफरेंट जगह पर हैं, तो रूट्स के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा अगर हम उन्हें कनेक्ट नहीं रखेंगे अपने कल्चर अपनी संस्कृति के साथ, तो क्या होगा, वो भूलते जाएंगे, और इससे सिर्फ उन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इफ़ेक्ट ओवरऑल पूरी संस्कृति पे पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को जो हमारे कल्चर के बारे में पता है उसका क्रेडिट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ जो है वो आगे ट्रांसफ़र की, हमें उन चीज़ों के लिए क्यूरियस बनाया कि क्या होता है, कौन सा त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कौन सा पर्टिकुलर फूड किस त्यौहार से रिलेटेड है। एंड विद आज की जेन ज़ी जेन अल्फ़ा जनरेशन अगर आप देखें, तो मेन चीज़ जो उनके अंदर लर्निंग के लिए जो उनकी बेसिक चीज़ डेवलप करती है वो है क्यूरोसिटी, और अगर आप उन्हें सिर्फ बोलेंगे कि हाँ राइट ऐसे ऐसे हम इस जगह से आते हैं, इस संस्कृति से आते हैं, इस कल्चर से आते हैं, तो उनके लिए इतना कुछ एंटरटेनिंग ये नहीं होगा। अगर उन्हें वो क्यूरोसिटी नहीं पैदा होगी कि कैसे, सबसे बेस्ट थिंग इज़ इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग आई वुड से एक्सपीरियंसिंग।
0: यस, दैट्स ट्रू।
2: जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता लगेगा।
1: बहुत सुंदर, और यही सेम चीज़ जे छे से हमरा बुझाइए नवनीत जी, खुशी जी सेहो कहलखिन जे एक्सपीरियंस रादर दैन एक्सप्लेन, तो इसीलिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसकी आवश्यकता है। और जना अहाँ सब कहलिए कि मिथिला मैप पर मात्र एक रीजन नहीं छे, इट इज़ अ लिविंग सिविलाइजेशन एंड लिविंग कल्चर। ऑस्ट्रेलिया जेहन मल्टी कल्चर देश में अपन संस्कृति के कॉन्फिडेंस आ ओपननेस के संग अगर अहाँ प्रेजेंट कऽ पबै छी तो ये बहुत बड़का अहाँ सब एक काज कऽ रहल छी। संस्कृत के चर्चा संगीत बिना अधूरा है, तो अगर संगीत के बात कैल जाए तो संगीत के ऊपर अहाँ की बुझे छी जे केहन रहबाक चाहिए अपन सबके संगीत केहन छे, अगर अहाँ पर एक एक, एक, एक किछु विचार हुआ तो?
0: संगीत सा हमर कनी रिलेशन कनी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैथिली के गाना सब जो शुरू भेल रहे उसमें हमर स्वर्गीय मामा, हमर मामा छलखिन स्वर्गीय हेमकांत झा, तो उनका बड़ा फेमस गाना रहन मामा यो कनी खैनी दिया, तो था जब छोटे थे तब इतना ये नहीं समझ में आता था, लेकिन अब जब मिथिला को अब एक बूस्ट तो मिला है पिछले कुछ लाइक कुछ सालों में, मैंने देखा है कि लोग अब मैथिली बोलना प्रेफर करते हैं। स्पेशली मुझे लगता है जब हम इंडिया छोड़ देते हैं ना, तब हम अपने रूट्स को ज़्यादा ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे जब तक मैं इंडिया में थी मुझे इतना नहीं लगता था, ये पता था कि मामा सिंगर हैं और गाते हैं, लेकिन अब जाके एहसास होता है कि नहीं, वो मतलब वो किस तरीके से, और वो हिंदी गाना नहीं गाते थे, वो सिर्फ मैथिली गाना ही गाते थे, और मतलब भगवती का गाना, विद्यापति का गाना।
1: बहुत बढ़िया बात है। अही पर एक संगीत सुनल जाए, और क्या कि राखी सेहो छलै है दू दिन पहिने, तो राखी पर एक गाना सुनल जाए मैथिली के।
0: जरूर।

0: असहाय जे ए भाई बहन पर आधारित गीत अपने सबके अवश्य नीक लागल होत। आगा बढ़े छी तो संध्या जी, अगर कोनो लिसनरी सोचि रहल छथि कि हम की कऽ सकै छी कि एतेक बड़का इवेंट छै आर एतेक सारा चीज हमसब कऽ रहल छी तऽ की कऽ सकै छी, तऽ हुनका लेल अहाँके पास की सलाह अछि, की भऽ सकै छै?
1: सबसे पहले तो हम अपन सबके श्रोता सबके कहब कि अहाँ सबके हम सब दिल से वेलकम करै छी माँ दुर्गा के भगवती आराधना में और हमर सबके मिथिला महोत्सव में, जे कि 17-19 अक्टूबर क्वेकर्स हिल में भऽ रहल छै। और जहाँ तक बात आबै छै वॉलंटियरिंग के, तऽ बेसिक चीजेस की तन मन और धन, अहाँ जेना जे हिसाब से छोट से छोट वॉलंटियरिंग अहाँ कऽ सकै छी तऽ अहाँ जरूर आउ। चाहे अगर अहाँ फाइनेंशियली कोनो हेल्प कऽ सकै छी, स्पॉन्सरशिप दऽ सकै छी, तऽ ओना अहाँ जुड़ सकै छी हमर सबके इनिशिएटिवसँ। आर फिजिकली वॉलंटियरिंग कऽ कऽ, एहि लए कि 3 दिन के महोत्सव में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज छै जतय अहाँ अपन कला देखा सकै छी। एंड एकटा आर चीज छै कि हमसब जेना मिथिला महोत्सव में मिथिला हाटो के एक इनिशिएटिव लेने छियै, तऽ अगर अहाँ के कोनो एहन चीज छै, स्टॉल छै जे अहाँ लगाबै चाहै छियै, तऽ अहाँ ओहिसँ कऽ सकै छी। आर अगर अहाँ घर बैस के किछु करय चाहै छी तऽ ओहो हमरा सब लग ऑप्शन है कि अहाँ सोशल मीडिया पर शेयर करू।
0: एतेक चीज छै हर व्यक्ति लेल, एहिमे किछु ने किछु छै, हर व्यक्ति लेल अहाँ कंट्रीब्यूट कऽ सकै छी कोनो ने कोनो तरह सँ, तन मन धन कोनो तरह सँ अहाँ सब कंट्रीब्यूट कऽ सकै छी। आओर ओतऽ ओहि इवेंट मे अहाँ सबके लेल, हर व्यक्ति के लेल किछु ने किछु अवश्य उपलब्ध रहत। अहाँ बहुत नीक बात कहलियै जे दुर्गा पूजा के हमसब आयोजन कऽ रहल छी आर अपन परम्परा मे देवी के नाम सँ पहिने हमसब माँ लगबैत छियै, जेना माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भगवती। पावर एंड कम्पैशन एग्जिस्ट टुगेदर, सो दुनू चीज संगे संगे एग्जिस्ट करै छै। तऽ नवनीत जी, ऑस्ट्रेलिया मे जन्मल पलल बच्चा अगर एतऽ के बॉर्न एंड ब्रॉटअप छै, तऽ रिचुअल्स, पुष्पांजलि, कन्या पूजन, प्रसाद, मातृका पूजा, ई सब बुझेनाइ हिनका किए आवश्यक छै?
2: जरूर जरूर, तऽ ई तऽ मतलब इएह हमर सबके जे अल्टीमेट गोल, हमर सबके अल्टीमेट गोल मिथिला महोत्सव या मिथिला के जीवित राखने के इएह छै। आओर हर जेनरेशन, हर जे मिथिला से बिलोंग करै छथिन, जे मिथिला से प्रेम करै छथिन, हुनकर गोल इएह रहैक चाही जे जे भी हमर सबके ट्रेडिशन छै, जे भी हमर सबके संस्कृति छै, ओकर बारेमे बतेनाइ, ओकरा पास ऑन केनाइ। तऽ रिचुअल्स के मीनिंग बच्चा सबके बुझेनाइ बहुत जरूरी छै। बच्चा सब सिर्फ एथिन और सिर्फ स्पेक्टेटर रहथिन से नहि होबाक चाही, हुनका सबके पार्टिसिपेंट बनेनाइ जरूरी छै कि ओ सब ओहिमे जुड़थिन, ओहिमे ओकरा एक्सपीरियंस करथिन और पार्टिसिपेट करथिन। ई सिर्फ ई पुष्पांजलि पूजा, मातृका पूजा, कन्या पूजा, ई सब संस्कृति तऽ छै, ई सब हमर सबके पूर्वज के देन एक परम्परा भी छै, जे अहाँ अपन ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे हर हमर सबके पूजा में मिथिला महोत्सव में हर एज ग्रुप के लोग रहथिन, बुजुर्ग रहथिन, युवा रहथिन, बच्चा सब रहथिन। तो ग्रैंड पेरेंट्स और अपन लीनिएज, अपन पूर्वज सबसे जुड़े के एक तरीका भी छे, अहाँ पूजा के इंक्लूसिव फैमिली एक्सपीरियंस बना सकै छी।
0: बहुत नम्हर बात है जहाँ कहलिए जे हर एज ग्रुप के लोग रहथिन, और एकटा जना पहिने मिथिला में एग्जिस्ट करे छले जे एकटा जॉइंट फैमिली के एकटा फील भेटते बच्चा सबके, और बच्चा सबके बुझे में हेतै जे कोन तरह के जे सभ्यता संस्कृति है, हमर सबके कोन तरह के सभ्यता संस्कृति, एतेक महान संस्कृति के हम सब हिस्सा छी। बहुत बढ़िया। तो खुशी जी, अगर हम अहाँ से पूछी कि जे यंग जनरेशन, जना घर में अपन सबके घर में धियापुता छनि, हुनका से अगर ई पूछे छै जे ई की करै छी, मतलब किया ई चीज चाही, कियाकि हुनका सबके तऽ प्रायोरिटी किछु अलग होइ छनि, तऽ ओ सवाल अपन अहाँके की बुझाइत अछि, अहाँ कल्चर से संबंधित दऽ सकै छियै कि किया अहाँ किया ई चीज आवश्यक छै एखन?
3: जरूर, देखियौ, कल्चर से तऽ जुड़नाइ बहुत ज्यादा जरूरी छै, कियाकि अगर अहाँ अपना रूट्स में नहीं छिए तो अहाँ कतौ नहीं छिए, हवा में ठाड़ नहीं भऽ सकै छी, अहाँके रूट्स चाही, जमीन अहाँके चाही। आर एहि लेल मिथिला महोत्सव एकटा बहुत बढ़िआँ इनिशिएट लेलखिन हँ एहि बेर, जे दुर्गा पूजा मिथिला महोत्सवमे दुर्गा पूजा सङ्गे जे मिथिला महोत्सव भऽ रहल छै ओहिमे दूटा बच्चा सबके एकटा स्किट आओर एकटा डांस परफॉर्मेंस छै। तऽ जे स्किट छै ओहिमे सीता स्वयंवर लेल गेल छै ताकि हुनका सबके ई मतलब बच्चों को ये फील आएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके का मतलब राम सीता का विवाह हुआ था, किस तरीके का उस वक्त हम किस दौर मतलब किस ये से आते हैं, बैकग्राउंड कैसा है, उनको ये फील आएगा। और मैं और जो इन्होंने लिया है मिथिला महोत्सव में मतलब जो कमिटी वालों ने लिया है, कोर मेंबर वालों ने, कि जो लोग हैं उन्होंने छोटे बच्चों को लिया है, सो जो इस साल स्टेज परफॉर्म करेंगे वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। आई एम श्योर कि वो बहुत एगरली फिर आगे आगे खुद बोलेंगे कि ओके हम करेंगे।
0: नहीं नहीं तो बहुत एक नॉवल कॉज है जहाँ बच्चा सबके डायरेक्ट हाँ श्री राम और माता जानकी से जुड़ रहा छी।
3: नहीं तो हम सब उनके उनके वंशज छियन, अगर अहाँ देखबे तो हम सब सीते के वंशज छियन, तो ये उनको पता होना चाहिए।
1: हम एक आरो चीज ऐड करब कि जिना स्पेशली ई जे एज कैटेगरी के बच्चा सब छे एकदम छोट अंडर 10-15 आई वुड से, तो इनका सब ले मतलब जना हम सब की पावर स्ट्रांग स्ट्रेंथ हीरोज सुपर हीरोज ई सब बहुत मैटर करे छे कि स्पाइडर मैन आयरन मैन भ गेले या प्रिंसेस देखे छे ई सब की बारबी
3: एना सब बड़ा पावरफुल कौन था
1: मतलब जे ई सब ऑलरेडी एक इमेजिनेशन फिक्शन कैरेक्टर्स जे छे ओकरा सब संगे एतेक रिलेट करे छे कि हाँ बारबी डॉल है ये है, तो उनका सबके ये बताबे में और एक्सपीरियंस कराबे में कि हमारी अपनी क्या कहते हैं सीता जी प्रिंसेस हैं, वी हैव आवर ओन किंग, तो जब वो खुद उस रोल को प्ले करेंगे तो
3: मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएट है बच्चों को पास ऑन करने का।
0: और जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग एक कोरस सॉन्ग भी कर रहे हैं जिसमें मिथिला का एक परंपरागत गीत की परंपरा है जहाँ पर जो स्त्रियां होती हैं वो बैठती हैं और एक साथ गाना गाती हैं।
1: हांसी भी नई चीज की शुरुआत में मिथिला में परंपरा है कि हम लोग देवी की स्तुति गीत इन सब से शुरुआत करें अपने
3: इवन शादी वगैरह में या इवन सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी बैकग्राउंड में गाना जो हाँ जो मम्मियाँ दादी या चाची लोग होती हैं वो गाना गाती रहती हैं, तो मिथिला में ये शुभ काम में तो पीछे गाना गाना।
0: इन दोनों जो आपने दो चीजें बताई, एक कोरस सॉन्ग और एक माता सीता से संबंध, ये इन दोनों को हम एक गाने के रूप में सुनते हैं, गाने को का आनंद लेते हैं।

0: तो आप कनि प्रैक्टिकल बात कनि सोचल जाए जे जतेक श्रोतागण छथि ओ सब सोच रहल हेता जे तीन दिन में एक्चुअली की हेतै, अहाँ एतेक बड़का इवेंट कर रहल छी, तीन दिन के इवेंट छै, तो चल आओ श्रोतागण हम अहाँ सबके जोड़े छी अपन गेस्ट सब सर पूछल जाए जे तीन दिन में अहाँ सब एतेक की करय वाला छी। तो नवनीत जी 17 अक्टूबर डे वन की हो वाला छै?
1: जरूर जरूर, तो हमर सबके बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही प्लान्ड इवेंट छै तीन दिन के। तो पहिल दिन के बारे में किछु बतबै छी, तो हमर सबके पहला दिन शुरू हेतै माँ भगवती के कल स्थापन से और मातृका पूजा से शुभारंभ हेतै। ओकर बाद हम सब मिथिला महोत्सव के कल्चरल एक्टिविटीज के तरफ बढ़बै। मिथिला महोत्सव कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत छै, हमर सबके एक काफ़ी फेमस एक हम सब स्किट राखलियन जाहिमे कालिदास और विद्योत्तमा के ऊपर एक आधारित बहुत ही इमोशनल और बहुत ही कल्चर रिच एक स्किट हेतै। हमरा सबके जकरा नहीं पता छै हुनका बता दीजिए, कालिदास जी के ऊपर माँ भगवती के बहुत बड़ा आशीर्वाद रहे। फोक डांस छै, ग्रुप सॉन्ग छै, मिथिला हाट छै, और भी बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स छै। साँझ में फिर माता की चौकी छै, ओकर साथ साथ हम सब कम्युनिटी डिनर भी रहते। तो डे वन पूरा डिवोशन कल्चर और कम्युनिटी के साथ एकदम फुल माँ भगवती का समर्पित छै।
0: पूरा ही पैक्ड प्रोग्राम छै डे वन पर, और अहाँ सबके बहुत बहुत साधुवाद जे अई लेवल के प्रोग्राम अहाँ सब सोचलिए। ई बहुत पहला दिन के जे डिटेल अपने देलिए सुन कर जे छै से हृदय गदगद भ गेल अछि। अब दोसर दिन के प्रोग्राम जे छै से संध्या जी की हो वाला छै दोसर दिन में?
2: तो दोसर दिन जे छै ओ बेसिकली महाअष्टमी के समर्पित छै, आर अइ में अहाँ के सबसे पहला प्रोग्राम जे हेतै ओ छै महापूजा, फिर पुष्पांजलि, कन्या पूजन एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस भऽ जेतै। बच्चा सबके डांस परफॉर्मेंस आर जे अपना सबके लोकगीत छै ओ संगे संग चलैत रहतै पूरा दिन। आर राति में हमरा सबके प्लान है कि डांडिया नाइट के एक आयोजन हम सब के लिए है, ओकरा बाद फिर महाप्रसाद। सो बेसिकली जो सेकेंड डे छै अपन ओ हेतै डिवोशन एंड कम्युनिटी बॉन्डिंगनेस
0: ले। ई तऽ आर जे कहि रहल छी अहाँ ओहि हिसाबसँ हमरा ई बुझा रहल अछि जे खाली मिथिलाके लोकके लेल नहि, ई प्रत्येक व्यक्तिके लेल एकटा खुजल आमन्त्रण छै जे अहाँसब आउ, एहि मिथिलाके जे महान संस्कृति छै, भाषा छै, कला छै, एहिके अहाँसब आनन्द लियौ, देखियौ। किएकि अहाँसब कहलिए डांडिया हेतै, माता की चौकी हेतै, जे हमरा बुझा रहल अछि जे दोसर दोसर कम्युनिटीके लोकसब आबिके सेहो कऽ रहल छथि। ई बहुत बढ़िया इनिशिएटिव छै अहाँ सबके, आर एहि लेल अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना।
3: ई ऐड करब जे मिथिला होस्टिंग लेल जे छै ने मिथिला काफी फेमस छै, अहाँके अगर स्वागत देखऽ के अइ, अगर आपको होस्ट फील करना है कि गेस्ट को कैसा फील कराया जाता है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम मुझे लगता है मैथिल इंसान से जरूर जुड़ना चाहिए और फील लेना चाहिए गेस्ट
2: उनकी होस्टिंग
3: उनके होस्टिंग का
2: बिल्कुल।
0: तो तीसरे दिन क्या कर रहे हैं हम?
3: तो तीसरे दिन जो है वो पूजा हवन और प्रसाद वितरण किया जाएगा जो, और सिंबॉलिक विसर्जन होगा एंड इट विल बी अ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल क्लोजिंग फॉर 3 डे सेलिब्रेशन। तो मन तो नहीं रहेगा पर बहुत भारी मन से हमको माँ को विदा करना पड़ेगा तीसरे दिन।
0: सो
2: वही मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये सब सुन के मुझे जो मेन चीज़ दुर्गा पूजा के रिगार्डिंग आती है कि दुर्गा पूजा इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी एंड बॉन्डिंगनेस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी फेस्टिवल छोटा है या बड़ा है, पर जखन अहाँ दुर्गा पूजा के बात करी छी तऽ अहाँके दिमाग में आबैया कि ओके जे अपना सबके बड़का छथिन जेना मम्मी पापा भऽ गेलखिन, ग्रैंड पेरेंट्स भऽ गेलखिन, ओ पैसा देथिन कि नया कपड़ा सब कीना के छै, फिर पंडाल सब में घूमा के छै,
3: और
2: पंडाल सब कोनो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहै छै जेना हमरे सबके दुर्गा पूजा और मिथिला महोत्सव छै, तऽ सब कम्युनिटी वेलकम छै। Come and experience the liveliness, I would say.
0: Very nice. So, listeners, Shrotagan, हाँ सब सुनने सुन लिए इनका, जय दिस इज ओपन टू ऑल,
3: यस
0: फ्री फॉर ऑल, हाँ सब आओ एक्सपीरियंस करियो और मिथिला के महान कला संस्कृति भाषा के अपना में आत्मसात करियो और इतना सा देखियो जे कौन प्रकार सा हमर संस्कृति बदल रहा है।
3: नहीं जरूर हम ऐड करब जे अगर माँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ सकती हैं हमारे लिए, तो हमको लगता है कि मैं पूरे सिडनी को इनवाइट करना चाहूँगी कि हमको भी जाके माँ का दर्शन करना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: कि जब माँ इतने दूर से आ सकती हैं तो अब हमारा ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वहाँ रहें।
0: एक तो, मैथिली के गाना सुनल जाए जे माता दुर्गा नवरात्रि में जे गायल जाए छे, एक झिझिया सेहो कहल जाए छे। बेसिकली झिझिया एक डांस फॉर्म छे, लेकिन डांस के संगे संगे एक नृत्य सेहो होइ छे जे माँ भगवती के सामने में जे स्त्रीगण सब छथिन से करे छथिन। तो आओ एक आनंद लेल जाए।

0: चल गए डैनी।
1: तो हमरा ई कहल जाओ जे ई जे दुर्गा पूजा के विषय में अहाँ सब बात करिए आ कार्यक्रम के नाम कह रहा छे मिथिला महोत्सव, ताहिमे मिथिला कत देखेते कत अहाँ के बुझा रहा है जे मिथिला कत आबि रहल छे? खुशी जी अगर कुछ बाजि सकबै पता
2: जरूर। तो मिथिला जे छै एहिमे कियाकि मिथिला जे छथिन से शक्तिके उपासकके जगह रहलखिन हँ। मैथिलके हमेशा देखलियै हँ माता शक्तिके आराधना करैत। तऽ मिथिला महोत्सव जे छै से दुर्गा पूजा कऽ रहल छथिन आ तैँ मिथिला कल्चरल सोसाइटी जे छथिन ओ दुर्गा पूजा कऽ रहल छथिन और इसीलिए इसमें मिथिला महोत्सव उसका एक पार्ट है। जो तीन दिन का दुर्गा पूजा है मिथिला महोत्सव उसका एक पार्ट है।
1: तो ये बेसिकली जो है मधुबनी मिथिला आर्ट म्यूजिक डांस ट्रेडिशनल अटायर जो मिथिला के ट्रेडिशनल अटायर हो बच्चा सब के परफॉर्मेंस जे सब ई कल्चर के लाइव वहाँ के एक्सपीरियंस दे।
2: हाँ लेकिन ई देखियो ई जस्ट एक स्टेज नहीं है ये मतलब ओपन टू ऑल। जैसे कि आपको पता ही ओपन टू ऑल है तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इसमें चाहे तो। लेकिन
1: और मिथिला का हर एस्पेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा।
2: हाँ जरूर मिथिला का हर एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको माँ सीता माँ जानकी और राम भगवान का रामायण का बहुत कुछ अंश इसमें देखने को मिलेगा।
1: तो संध्या जी अगर इसमें फैमिली पार्टिसिपेशन की बात करें ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करें खाने की बात करें क्योंकि हम लोग खाने से कुछ ज़्यादा ही एसोसिएटेड हैं। कहा भी जाता है कि मिथिला में भोजन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो किस तरह से लोगों का फैमिली का पार्टिसिपेशन होना चाहिए खास करके महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्या आप इसमें देखती हैं?
3: मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन और फैमिली का अगर हम बात करें तो किसी भी इवेंट में जो लाइवलीनेस होती है वो उन्हीं के पार्टिसिपेशन से आती है। घर की चाहे छोटी सी पूजा हो उसमें आप देखेंगे कि ट्रेडिशंस को अलाइव रखना चाहे वो पारंपरिक खाना हो या वेशभूषा हो या फिर हमारा जो आर्ट है कि किसी पर्टिकुलर पूजा के साथ जैसे हम लोग अपने में अर्पण डालते हैं तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना और अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाना तो उसमें महिलाओं का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
2: और अर्पण भी अलग अलग तरीके का होता है अलग अलग चीज़ों में
3: तो वही चीज़
1: है। अर्पण क्या होता है थोड़ा इसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
2: अर्पण सॉर्ट ऑफ जैसे कि आप हर जगह देखेंगे रंगोली और ये सब होता है वैसे ही मिथिला में चावल को पीस के चावल को सोक करते हैं ओवरनाइट और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको पीस के उससे ड्रॉ करते हैं। तो हर सत्यनारायण भगवान पूजा में कमल फूल का अर्पण पड़ता है। शादी के टाइम अलग बनता है जनेऊ के टाइम अलग बनता है
3: मतलब
2: और फिर सिंदूर लगाते हैं।
3: मेनली इट इज़ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं रंगोली आर्ट है। जैसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अगर आप देखें तो कहीं वर्ली आर्ट होती है जैसे ओनम सब में साउथ इंडिया में डिफरेंट डिजाइंस बनाए जाते हैं तो वैसे ही मिथिलांचल में ये परंपरा है।
1: तो ये तो काफ़ी कुछ है जो लोगों को देखने को मिलेगा लोगों को सीखने समझने को मिलेगा मिथिला कल्चर के बारे में कि एक यदि हम किसी भी चीज़ को ले लें परिधान की बात कर लें तो इंडिया मिथिला का अपना एक परिधान है। अगर हम खाने की बात ले लें तो मिथिला के कई व्यंजन इस प्रकार के हैं जो मात्र सिर्फ केवल मिथिला में ही पाए जाते हैं
2: तो और आज भी बनते हैं
1: और आज भी बनते हैं।
2: यस
1: तो इसमें एक चीज़ जैसे अभी इन सारे बातों में एक साहित्य हम पर हम अधिक बात नहीं कर पाते हैं तो नवनीत जी अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये साहित्य और थिएटर इन सब चीज़ों का क्या इसमें कुछ स्थान दिया गया है मिथिला महोत्सव में?
4: बहुत ही ऊंचा स्थान है साहित्य के क्षेत्र में तो मुझे लगता है बिहार और जो भी हमारे जो नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र हैं उसमें मिथिला का जो साहित्य है काफ़ी एनरिच्ड है। खास करके जो विद्यापति जी का जितना लेखन है माता के लिए महादेव के लिए वो तो अगर आप पढ़ेंगे इट्स अ वेरी प्रोलिफिक लिटरेचर का काम उन्होंने कर रखा है और उसमें एक समर्पण और एक एक जो हम मिथिला में जो एक भगवती का जो स्थान है उसको दर्शाया गया है। तो साहित्य के रूप में और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं जो मिथिला से हैं, बाबा नागार्जुन मिथिला से आते हैं, उनका काफ़ी साहित्यिक एक अपना ही महत्व है। और थिएटर के ऊपर जो आपने कहा, तो हम कनी मिथिला मैथिली में आब जाए छी, थिएटर में भी काफ़ी काम भेल छे, जेना कि एबेर मिथिला महोत्सव में एक बहुत ही हम सब बढ़िया थिएटर करे वाला छी, जे कालिदास और विद्योत्मा के एक जीवन के एक इवेंट के ऊपर बेस छे। तो उ एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सेंसिटिव एक स्किट हेतै, तो एक मिथिला महोत्सव में हम सब बहुत हाईलाइट करे।
1: मिथिला हमेशा से भाषा और संस्कृति के एक केंद्र रहल छे, और वही परंपरा में पिछला साल हम सब केलौं, अहाँ सब केने रही विद्यापति और उगना के ऊपर में एक ड्रामा केने रही, स्क्रिप्ट केने रही, और दोसर स्क्रिप्ट केने रही उगना के गोनू झा के ऊपर में, जे कि काफ़ी हास्यास्पद रहे, बहुत बढ़िया बात है। और वही परंपरा के यहाँ सब फिर आगा बढ़ा रहा छी, और एक आर ऊंचाई पर ले जा रहा छी कालिदास के ऊपर में, क्या कि कालिदास एहन एक कैरेक्टर छथिन भारतीय भाषा संस्कृति के में, जे हुनका तक आई तक क्यों मैच नहीं कर पेले है। तो कालिदास के कालिदास बने से पहिने कि कौन प्रकार के घटना सब घटित भेले, कौन प्रकार से कालिदास मिथिला से संबंधित छथि, तो अहाँ सब के ये सब सुनो लेल भेटत, और बहुत किछ कालिदास से संबंधित अहाँ सब बुझबे, हुनकर रचना के बारे में, कलाकृति के बारे में जाय तरह के गहराई अहाँ सब हुनकर काव्य में देखे छियनि। हालांकि जे केओ इंटरेस्टेड छी कनिको भाषा में कालिदास के विषय में अवश्य देखने हेबे, तो ये सब चीज अहाँ सबके अवश्य देखे लेल भेटत, सुनय लेल भेटत। तो नवनीत जी जहाँ कह रहल छलिए कि एतेक किछु छै, तो अहाँ के जरूरत नहीं है, अहाँ के कोनो आवश्यकता नहीं है, जे अहाँ मिथिला कल्चरल सोसाइटी के जे प्रोग्राम छै मिथिला महोत्सव दुर्गा पूजा, एहि लेल मैथिल भेनाइ कोनो आवश्यक नहि छै। दुनिया के कोनो पार्ट के कोनो व्यक्ति एहि महोत्सव के हिस्सा बनि सकै छथि, और हुनका सबके लेल हमर सबके तहे दिल से स्वागत करै छी। हम सब जे अबियौ, देखियौ, बुझियौ, एक्सपीरियंस करियौ, और एहि महान संस्कृत के हिस्सा बनियौ। तो ई फिर से हम ई चीज के रिपीट करब, दिस इज ओपन टू ऑल, बी अ पार्ट ऑफ इट, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। तो आओ एक बेर आर एहि चीज के आगा बढ़बैत एक गाना के आनंद लेल जाए।

0: मिथिला के माटी बड़ा निक लागे। एकटा हमरा सबके याद अबे है जहन हम सब गांव जाए छलो हैं तो चार भाई छलो हैं हम सब और खूब लौटे छलो हैं प्रकार विभिन्न प्रकार के हम सब जे छे से बचपन में क्रीड़ा करे छलो हैं और जे हर बच्चा छले ऐसे ओकरा ततेक निक लगे छले आई के मोबाइल स्क्रीन ये सबसे दूर बहुत बढ़िया रहे छले है तें ई गाना हमरा कनिक पसंद छले तो ई हमर कनिक हमर फेवरेट है। तो चलू आगा बढ़े छी। एतेक पैघ आयोजन अपने सब कह रहल छी नवनीत जी आर जाहिमे बुझाइए जे कम से कम हजारों लोग आबय वाला छथि एतेक पैघ आयोजन के मे एक दू गोटे से तो संभव नहीं छै ताहिमे वॉलंटियर्स छथि आर्टिस्ट छथि महिला छथि यूथ चिल्ड्रेन के पार्टिसिपेशन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टर्स स्पॉन्सर कोन कोन तरह के मतलब कतेक प्रकार के व्यक्ति सब से अहाँ सब डील कर रहल छी कोन कोन तरह के लोग सब के अहाँ एसोसिएट कर रहल छी ई बहुत नम्हर बात छै तऽ ई अहाँ के लेल कम्युनिटी ओनरशिप के की महत्व छै की बुझाव में आबि रहल अछि।
1: बहुत बढ़िया सवाल केलहुँ शिशिर जी अहाँ। तऽ ई आयोजन देखियौ ई तखने सफल भए सकै छै जखन पूरा कम्युनिटी एकरा अपन आयोजन समझै आओर ई सिर्फ मिथिलाके तऽ कल्चरके बारेमे छै मिथिलाके संस्कृतिके बारेमे छै माँ भगवतीके बारेमे छै लेकिन ई पूरा कम्युनिटीके अपन इवेंट छियै। अहाँ केओ भी अहाँ कोनो कम्युनिटीसँ बिलोंग करै छी अहाँ एहिमे पार्टिसिपेट कए सकै छी। ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी नेपालीज डायस्पोरा सब एहिमे जुड़ियौ आओर ककरो अगर वॉलंटियर करैके कनि इच्छा यऽ कोनो कल्चरल प्रोग्राम करैके इच्छा यऽ पूजामे पार्टिसिपेट करैके इच्छा यऽ अहाँके यजमान बनैके इच्छा अगर हैत खाना फूड मैनेजमेंट कोनो चीज में सहयोग करे की इच्छा है वो कह सके छी कोनो तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट
0: यजमान बना के इच्छा है यजमान की होय छे
1: तो यजमान देखियो यजमान होय छे जे जिनका पूजा अहाँ के पूजा के अथी ले किया संकल्प ले किया और पूजा अहाँ बैस के पूजा करे चाहे छी तो अहाँ के डेडिकेटेड हमर सबके एगो पूजा लम पंडित जी रहथिन वो अहाँ के बैसा के पूरा एंड टू एंड पूरा पूजा करेथिन पुष्पांजलि जे भी अहाँ के कोनो कबला या कोनो तरह के संकल्प
0: या से अहाँ कह रहल छे जे यजमान जे हेथिन से कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव रहथिन और कम्युनिटी के लेल वो पूजा करथिन एहिमे क्यों आबि सकै छथि क्यों ज्वाइन कऽ सकै छी यजमान बनना एकटा गर्व के विषय छै जेना अहूँ एकटा यजमान छी हमू प्रयास करब एकटा यजमान बनय के आर के बहुत पाँचटा यजमान एखन तक जुड़ चुकल जेना एहिसँ पहिने बात भऽ रहल छल तऽ यजमान बननाइ एकटा गर्व के विषय छै जे अहाँ पूरा मिथिला समाज के अहाँ रिप्रेजेंट कऽ रहल छी बहुत नीक बहुत नीक।
1: हाँ हाँ जरूर इएह तऽ यजमान बननाइ अपनामे एक सौभाग्य के बात छै जे अहाँके अहाँ माता के संकल्प लए के माता के पूजा करे के अहाँके एक सौभाग्य भेटल और ओनाहू अहाँ पूजा कए सकै छी लेकिन यजमान बनब तऽ अहाँके बहुत बढ़िया लागत। और जे शुरूमे अहाँ कहलियै हमसब कम से कम 3,000 से 3,500 फुटफॉल्स एक्सपेक्ट कए रहल छियै एहिबेरके आयोजनमे
0: बहुत नम्हर छै
1: और एहिसँ ज़्यादा भी हेतै ई हम मिनिमम कहलहुँ कते आगे ज़्यादा हेतै ओ अभी पता चलतै लेकिन कम से कम एतेक हेबे करतै। और फाइनेंशियल सपोर्ट कोनो कंट्रीब्यूशन डोनेशन अहाँ करे चाहे छी अहाँ कह सकै छी सब डिटेल्स भेट जाएत। और अगर अहाँ पहला चीज करू जे अहाँ आउ एहिमे पार्टिसिपेट करू ओकर बाद अहाँके कोनो चीज और के इच्छा या तू भी कह सकै छी
0: बहुत बढ़िया। आ ई कंट्रीब्यूशन केवल मनी के कंट्रीब्यूशन नहीं होइ छै ई तऽ छै है लेकिन ओकरा अलावा यदि अहाँ समय दे सकै छी कोनो तरह के कला में निपुण छी कोनो प्रकार के वॉलंटियर कऽ सकै छी या कोनो प्रकार के रिसोर्स सँ कोनो आर्थिक सहायता दऽ सकै छी तन मन धन जाहि प्रकार से संभव होय ओहि प्रकार से जुड़ू अहाँ के समय सेहो बहुत आवश्यक अछि बहुत इम्पोर्टेंट छै महत्वपूर्ण छै हमरा सबके लेल कोनो तरह से यदि जुड़ सकै छी तऽ एहि महान संस्कृति सँ महान कला सँ महान परम्परा सँ जुड़ू आर ई एकटा मिथिला के लेल गर्व के विषय हेतै जे अहाँ सब एलियै और अहाँ सब देखलियै हमर सबके प्रोग्राम बुझलियै तऽ एहि लेल अपने सब अबियौ देखियौ बुझियौ और कंट्रीब्यूट करियौ। तब यदि हम कही कि यजमान तो अहाँ एक बात कहलिए, यजमान के अलावा और कथी कथी एहिमे छै जे अहाँ सब, अच्छा एहिसँ पहिने कि हम सब आगाँ चली, एक बेर हुनका सबके लेल जे जुड़ चाहै छथि, नंबर नहि, नंबर के विषय में नहीं पता छनि चाहे वेबसाइट के विषय में नहीं पता छनि, जानकारी दे दै छियै, तो अगर केओ संपर्क करय चाहे छी तो संपर्क करू 0426-399-461 और ई जानकारी हमर सबके वेबसाइट पर सेहो उपलब्ध है www.mithilaculturalsociety.au। अहाँ सबके स्वागत है, जाय प्रकार से जुड़ चाहे छी जुड़ू। तो यजमान सेवा के अलावा यदि आर कोन कोन तरह के सेवा छै तो अगर बाजि सके छी तो एहि पर कनी कनी एहि पर प्रकाश डालियो संध्या जी, जे यजमान सेवा छै आर
2: यजमान सेवा के अलावा हमरा सब लग पुष्प सेवा छै, अहाँ दीप सेवा कऽ सकै छियै, कलश सेवा कऽ सकै छियै, कुमकुम सेवा कऽ सकै छियै, आर भोग भऽ गेलै, आर सबसे बड़का चीज भगवती के सेवा।
0: वाह वाह, बहुत उत्तम विचार है चारे, ई तो सुनकर हमरा अपने मन गदगद भऽ रहल है जे एखन हम अपना तरफ से सबके हकार दऽ दियन, यदि हकार नहीं बुझे थे तो इन्विटेशन होइ छै मिथिला में, मैथिली में इन्विटेशन को हकार कहा जाता है, सबके हकार दियन जे हाँ सब आवे जाए जाओ, आइए आप लोग, इस चीज को समझिए देखिए, और ये जो भी प्रोग्राम है जो भी इवेंट है ये सब आपके लिए ही है, आपके लिए ही बना है, और हम चाहते हैं कि आप पूरी फैमिली के साथ फ्रेंड्स को लेकर के आएँ, रिलेटिव्स को लेकर के आएँ और इस प्रोग्राम का आनंद उठाएं। तो क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, तो अपन तीनों गोटे से आग्रह है जो अपन उत्तर के छोट रखब, तो नवनीत जी मिथिला लेल की शब्द, मिथिला लेल अहाँ की छे एक शब्द में?
1: एक शब्द में मिथिला हमरा लेल छै माँ जानकी।
0: संध्या जी माँ दुर्गा पूजा अहाँ लेल की भेल?
2: हमरा लेल माँ दुर्गा पूजा भेल भक्ति शक्ति आर फैमिली बॉन्डिंगनेस के अपॉर्चुनिटी।
0: वाह खुशी जी, व्हाई शुड यंग पीपल कम टू मिथिला महोत्सव, क्या आवाक चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के?
3: नेक्स्ट जनरेशन को जरूर आना चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, हमारे पूर्वज कौन थे।
0: वाह,
3: सो वी कैन कैरी दैट मॉरल जो अब खोता जा रहा है, तो हमको वो।
0: तो नवनीत जी 17 अक्टूबर के पहले इनविटेशन हाँ ककरा दे?
1: पहले इनविटेशन, इनविटेशन देके तो उनका जरूरत नहीं छे, माँ भगवती अपने आबि रहल छथिन, लेकिन इनविटेशन हमर पहला इनविटेशन छे हर उ व्यक्ति के, हर उ पर्सन के जे ऑस्ट्रेलिया में छथिन और जे माँ भगवती में श्रद्धा रखे छथिन और मिथिला के बारे में किछ जाने छथिन, अगर मिथिला से नहीं छथिन और मिथिला से छथिन तो उनका तो जरूर इनविटेशन छे, लेकिन हर उ व्यक्ति के छे जे माँ भगवती में कनियो श्रद्धा रखे छथिन, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छे उनकर सेवा करे में।
0: बहुत जबरदस्त। तो संध्या जी श्रोतागण सबके अगर अहाँ अपन भाषा में मैथिली में अगर कोनो इनविटेशन देबा चाहे छे 20-30 सेकंड में तो कनी हुनका सबके हकार दो दियो।
2: सबसे पहले तो हम गए हकार हकार हकार तो हमर सबके जितने श्रोतागण सुन रहल छथिन हुनका सबके तहे दिल से हम मिथिला कल्चरल सोसाइटी के तरफ से दुर्गा पूजा और मिथिला महोत्सव के हकार दौ रहल छिए, और हमर सबके हकार में खाना वो इंक्लूडेड है यहाँ सबके, तो ई नहीं सोचब कि घर जाकर खाना पीना ये सब करे पड़त, तो आब सुंदर से एकदम तैयार भौकर नीक नीक कपड़ा सब में और माँ भगवती के आशीर्वाद तो लेबे, साथ में कम एंड एक्सपीरियंस मिथिला कल्चर विद अस एंड 17-19 अक्टूबर क्वेकर हिल्स, अपन सबके कैलेंडर मार्क कर लिया, 3 दिन ले अहाँ सबके आवे के है मिथिला महोत्सव में।
0: बहुत बढ़िया खुशी जी, जे यंग लिसनर्स छे नेक्स्ट जनरेशन तो हुनका सब लेल एक लाइन में की मैसेज हेतै?
3: हुनका सब लेल मैसेज हेतै कि अपन मम्मा के वार्डरोब खोलू और किछ बढ़िया साड़ी, इंडियन अटायर, इंडियन ज्वेलरी कैरी करू, कम इन योर बेस्ट लुक, और मम्मा सब लेल सेहो इनविटेशन छै जे प्लीज वार्डरोब सा जो कुछ भी, क्योंकि हमें इंडियन अटायर, हमें ज्वेलरी, जो भी इंडियन लेडीज़ है, मैं सबको, मैं यहाँ मिथिला को नहीं इनवाइट कर रही हूँ, मिथिला का तो ये घर ही है, मैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में, सिडनी में रहने वाले सारे इंडियंस, इवन जो ऑस्ट्रेलियंस हैं जिनको इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता है, मैं उन सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आप आइए अपने बेस्ट अटायर में, जो भी ज्वेलरी कपड़े आपने सालों से नहीं पहना है, जो रखा हुआ है कहीं पे, उन्हें निकालिए, पहनिए,
2: आई वुड से कम एंड एक्सपीरियंस मिथिला कल्चर एंड मां भगवती ब्लेस,
3: एंड दिस इज अ दुर्गा पूजा, एंड दुर्गा पूजा इज फॉर एवरीवन।
0: बहुत बढ़िया। तो नवनीत जी, यहां के यहां कुछ कहना चाहते हैं फाइनल अथी? तो एमए एचए से अहां सब अभियो फाइनल हमरा दिस सब गोटे के इनविटेशन है जे प्लीज कम इन योर बेस्ट अटायर, जेना खुशी जी संध्या जी कहले, और जे क्यों
3: यजमान, वी हैव स्टॉल एज वेल, इफ एनीवन वांट टू बुक एनी स्टॉल
0: जी,
3: दे आर 6x6 feet स्टॉल, दो दिन के लिए है, दो टेबल दो चेयर, एंड इवन इफ यू वांट टू यू कैन शेयर विद द स्टॉल विद एनी ऑफ योर फ्रेंड, सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट एंड यू विल गेट टू नो एवरी इन्फो फ्रॉम देयर।
0: किसी भी प्रकार का सेवा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है, यजमान सेवा से लेकर के पुष्प सेवा, दीप सेवा, जिस प्रकार की भी सेवा आप करना चाहें, या केवल समय देना चाहें, या केवल आप बैठ के आनंद लेना चाहें, इसमें भी हम आपका स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सुनने के लिए। आइए, हम आपको एक मिथिला के पारंपरिक गाना के साथ छोड़े जाते हैं।

0: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: रेडियो 2098.5 FM, मल्टीकल्चरल रेडियो.
2: आज रविवार युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2082, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 22 मार्च 2026 है. दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार. अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार. मुख्य समाचार इस प्रकार हैं. अवैध जुए और सट्टेबाजी पर सरकार का बड़ा एक्शन. 300 वेबसाइट और बेटिंग ऐप्स को किया ब्लॉक. पीएम मोदी ने देशवासियों को दी चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की शुभकामनाएं. अब बढ़ेंगी पीएफ की न्यूनतम पेंशन. भारत का बड़ा फैसला, रूस से भी खरीदेगा एलपीजी. एमईए ने बताया कि 9000 से ज्यादा भारत

0: जुआ और सट्टेबाजी की वेब।
1: आज रविवार युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2083, भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया 30 अगस्त 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार है। बाढ़ में राहत बचाव के लिए विदेशी मदद लेने को तैयार हुआ नेपाल, भारत से टीमें रवाना होने के लिए तैयार। 12 साल का बेमिसार सफर, जनधन योजना ने रचा इतिहास। खुले 59 करोड़ खाते, 3.17 लाख करोड़ से भर गई तिजोरी। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत, कोयले पर निर्भरता होगी कम। कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम, खाने पीने के सामान पर अब दिखेगा लाल निशान। टेस्ट हारने के लिए एक पल की बेवकूफी काफी है, ऋषभ पंत के शॉर्ट सिलेक्शन पर बुरी तरह भड़के अश्विन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। नेपाल में भीषण बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। वहीं काठमांडू सरकार ने पहले विदेशी राहत टीमों को राहत और सहायता के लिए मना कर दिया था, वहीं बालन शाह ने अब इस फैसले को पलट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अब नेपाल सरकार समिति विदेशी विशेषज्ञों और खोज बचाव टीमों को अनुमति दे रही है। भारत ने नेपाल के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। देश के हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए शुरू की गई मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपनी सफलता के 12 शानदार साल पूरे कर लिए। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना ने अब वित्तीय समावेशन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। योजना के 12 साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो 19 अगस्त तक देश भर में 59.09 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3.17 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। शुरुआत में इन खातों को जीरो बैलेंस खाता माना जाता था, लेकिन आज हर जन धन खाते में औसतन 5,356 जमा है। पिछले 12 सालों में प्रति खाता औसत जमा में 3.4 गुना की वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि गरीबों में भी अब बचत करने की आदत तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षमता विस्तार की गति बढ़ा दी है और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शुक्रवार को जारी आधिकारिक फैक्ट शीट में बताया गया है कि इस समय में देश में 24 परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। 7.5 गीगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 9 संयंत्रों का निर्माण चल रहा है। जल्द ही खाने पीने की वस्तुओं के पैकेट पर आपको अधिक चीनी नमक की चेतावनी दिख सकती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अधिक चीनी नमक या फैट वाले खाद्य और पेय पदार्थों के पैकेट पर लाल रंग का चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव दिया है। इससे उपभोक्ता उसे खरीदने के पहले स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को लेकर सचेत हो सकेंगे। नेस्ले, पेप्सिको और कोका कोला जैसी कंपनियों ने इस कदम का विरोध किया है, क्योंकि इससे बिक्री पर असर पड़ने की आशंका है। भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज के दौरान ऋषभ पंत के शॉट चुनने और फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज अभी तक उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं जो उन्होंने खुद से लगाई है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर उतरे पंत ने कुल

168 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल थे। हालांकि उनके आक्रामक अंदाज पर सवाल उठते रहे। अश्विन का मानना है कि पंत का स्वाभाविक आक्रामक खेल हालात के हिसाब से फैसले लेने की जरूरत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,47,860 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 95 रुपए 61 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 68 रुपए 39 पैसे। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार सिडनी, बहुत बहुत स्वागत है दर्पण रेडियो पे आपका। आज के कार्यक्रम में थोड़ी आपाधापी हो गई है क्योंकि यहाँ पार्किंग की थोड़ी समस्या है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में आपका साथ दे रहे हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम का की रूपरेखा जो है वो हम जो है दो हमारे अतिथि हैं, एक ऋचा व्योम से हम बात करेंगे इस्कॉन जन्माष्टमी पे। इसके अतिरिक्त हम हरतालिका तीज के बारे में बात करेंगे और ये वार्ता प्रस्तुत करेंगे BGCA से नीता कुमारी और श्वेता कुमारी। इसके अलावा एक श्रद्धांजलि देंगे नेपाल ट्रेजेडी, हार्टफेल्ट रिफ्लेक्शन एंड प्रेयर्स फॉर दोज अफेक्टेड। हमारे पास आज जो है वो महान संगीतकार और लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी का जन्मदिवस है, उनको भी एक ट्रिब्यूट देंगे और इनके गीत आपको सुनाएंगे। तो प्रोग्राम लंबा चौड़ा है, सुनते रहिए, जुड़े रहिए। अब समय होता है प्रभु वंदना का और उसके बाद सुनते हैं एक सुंदर सा भजन जो जिसकी शुरुआत हो गई, लेकिन हम आपको पहले आज का विचार बताते हैं। तो आज के विचार में दो बातें हम आपको बताना चाहेंगे। पहला विचार तो ये है कि स्वाभिमान इतना भी ना बढ़ाएं कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी ना करें कि स्वाभिमान ही मर जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा विचार जो है वो नेपाल से जुड़ा हुआ है और बहुत डीपली इसको महसूस कर रही हूँ कि घर से निकलकर वापस सुरक्षित घर लौटना भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे लोग आंकते नहीं हैं। अब सुनते हैं ये भजन।

0: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे शैलेंद्र जी की। उनका उनका जन्म दिवस है और उन्होंने इतने सुंदर सुंदर गीत हमें दिए हैं फिल्मी जगत को, जो हमारे घर में, हमारे दिल में जो है वो घर कर गए हैं। उनका जन्म 30 अगस्त 1923 को हुआ था और हाल में ही गत शुक्रवार को हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। और रक्षाबंधन का पर्व जो है वो हम सब भारतीयों के बहुत दिल के करीब है, तो मुझे लगा कि क्यों ना शैलेंद्र जी का लिखा हुआ रक्षाबंधन का सबसे फेमस गीत आपको सुनाते हैं। शायद आपको पता ना हो कि ये गीत उन्होंने लिखा है, तो आइए इससे शुरुआत करते हैं।
1: श्री ओम की नई रेस्पाइट केयर सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा, भोजन व संस्कार से आपको या आपके परिजनों की देखरेख हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो? हमारी सेवाएं ललौर बाग और वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डेमेंशिया सपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1-300-908-681। ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
2: श्रोताओं, बात करना चाहते हैं नेपाल की भयावह त्रासदी की। मन बहुत ही व्यथित है कि इतनी बड़ी घटना हुई, प्राकृतिक घटना थी या मैन मेड घटना ये रही, क्योंकि हम इतनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं और प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका ही ये परिणाम था। लेकिन जो भी हुआ, बहुत ही दुखित, सबके जीवन में हमेशा ही ऊपर नीचे चलता रहता है, दुख और सुख का मिलन रहता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको झकझोर के रख देती हैं। तो नेपाल की ये भयावह त्रासदी जो है, वो ऐसी एक घटना है जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया है। कुछ भी त्यौहार या कुछ भी करने का मन नहीं लगता है। एक ऐसा सैलाब आया जिसकी भयावहता देखकर ऐसा लगा मानो प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया हो, और जैसे इस विनाशकारी जल प्रलय ने पूरी सृष्टि को ही निगल लिया हो। मैं पढ़ रही थी कि उसमें 30 मीटर की वॉल जो है वो बन गई थी पानी की। सोचिए, लोग तो उसमें चींटी की तरह बह गए होंगे। सोच के भी मन कांप जाता है। आपको, आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि 39 लोगों का एक ट्रूप गया था कैलाश दर्शन के लिए, और उनका अभी कुछ भी पता नहीं चला है। तो इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। लापता ऑस्ट्रेलिया के नागरिक जो हैं वहाँ पे, उनके परिवारों के लिए हमारी विशेष प्रार्थनाएं हैं। महादेव से प्रार्थना है कि लापता लोग सुरक्षित घर लौटें और प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति और संबल मिले। हमारी प्रार्थनाएं उन सबके साथ हैं।

जी हाँ श्रोताओं, इतना मार्मिक ये गीत है और जिसे गा रहे थे एस डी बर्मन जी और इसे लिखा था शैलेंद्र जी ने। जी हाँ श्रोताओं, आज के सभी गीत जो है वो शैलेंद्र जी के ही लिखे हुए रहेंगे और इतने गीत हैं इनके जो आप सभी के बहुत करीब हैं, लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं मैं उनको सुनाने की कोशिश करूँगी। आज के विशेष फीचर में हम बताएंगे कि शैलेंद्र जी ने जो है किस तरह से गीत लिखे और उनके गीतों में आम आदमी की पीड़ा सुनाई देती है, कभी प्रेम की मासूमियत, कभी सपनों की उड़ान और कभी जीवन दर्शन। जी हाँ, ये नाम शैलेंद्र जी का है जिन्होंने इस तरह के गीत हमें दिए। शैलेंद्र जी का पूरा नाम था शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र, लेकिन शैलेंद्र जी उसी नाम से वो गीत लिखते थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था। आगे चलकर वो हिंदी फिल्म जगत के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय गीतकारों में शामिल हुए। लेकिन शैलेंद्र जी की कहानी केवल एक सफल फिल्मी गीतकार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने अनुभवों, संघर्षों और संवेदनाओं को कविता में ढाला और फिर उन कविताओं को करोड़ों लोगों की आवाज़ बना दी। इनका सबसे प्रिय गीत आवारा हूँ आप सबको याद होगा, ये एक फिल्मी गीत नहीं था, उस दौर के उस आम इंसान की आवाज़ थी जो दुनिया की बंदिशों के बीच भी अपने रास्ते तलाश कर रहा था। फिल्म थी आवारा और उसका ये गीत बहुत ही मशहूर हुआ, जिसको संगीत दिया था जयकिशन जी ने और आवाज़ दी थी मुकेश ने। शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसे बहुत सारे ऐसे गीत दिए जो आज भी उतने ही जीवंत लगते हैं। राज कपूर की फिल्मों में शैलेंद्र के गीतों ने एक अलग ही दुनिया बनाई। बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, जिस देश में गंगा बहती है, जैसी अनेक फिल्मों में उनके गीतों ने कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया बल्कि किरदारों की आत्मा को भी आवाज़ दी। शैलेंद्र की सबसे बड़ी खूबी थी सरल भाषा में गहरी बात कहना। उनके गीत सुनने के लिए किसी कठिन साहित्यिक शब्दकोश की ज़रूरत नहीं थी, ये आम बोलचाल की भाषा में ऐसी बात कह देते थे जो सीधे दिल में उतर जाती थी, जैसे कि मेरा जूता है जापानी। कितना सरल गीत, लेकिन सबके दिलों में बस गया। इसके भीतर बहुत खूबसूरत विचार छिपा है। इंसान कहीं का भी हो, उसकी पहचान उसके दिल और उसके कर्म से होती है। शैलेंद्र जी ने देश, समाज और इंसानियत को अपने गीतों में बहुत खूबसूरती से पिरोया था। प्रेम के गीतों के भी ये शायर माने जाते हैं। वो सिर्फ सामाजिक और दार्शनिक गीतों के गीतकार नहीं रहे, प्रेम को उन्होंने जितनी सहजता और मासूमियत से लिखा वो भी बहुत अद्भुत है। उनके गीतों में प्रेम दिखावे वाला नहीं था, वो चुपचाप महसूस होने वाला प्रेम था। तो चलिए शैलेंद्र जी की आगे भी हम बात करते रहेंगे, सुनते हैं उनका एक खूबसूरत गीत और आगे बातचीत जारी रहेगी।

0: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
1: Har Ravivar suniye Darpan Hindi Kaikam, 98.5 FM par, subah 9 se 11 baje tak.
2: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
3: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
4: करी मास्टर्स का संदेश।
5: श्रोताओं, आपसे वादा किया था कि आज जो है हमारे पास दो मुख्य टॉपिक हैं और अतिथि भी पधार चुके हैं स्टूडियो में, तो बातें करने जा रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में। मेरे पिछले प्रोग्राम में जो हमने सावन स्पेशल किया था, आपको बताया था कि भारत में मुख्यतः तीन तरह की तीज मनाई जाती है। पहली होती है हरियाली तीज और कजरी तीज, दूसरी होती है और तीसरी होती है हरतालिका तीज। तो हरियाली तीज आपको पता ही है, हमारे श्रोताओं ने भाग लिया था। हरियाली तीज जो हमने क्रूज़ पे मनाया था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हरियाली तीज जो है वो सखियों का त्यौहार होता है, जब वो मायके आती हैं और रक्षाबंधन में वापस लौटती हैं और झूले झूलती हैं। तो वो सब कुछ हमने क्रूज़ पे इस बार किया और क्रूज़ पे झूला झूले बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आप सबका धन्यवाद जो उसमें शामिल हुए। कजरी तीज है जिसमें मुख्यतः हम कजरी सेलिब्रेट करते हैं, कजरी उसमें गाते हैं। और सावन की तो है बातें करते ही हैं, पूरे सावन में हम मेहंदी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। अब आज हम मुख्यतः बात करेंगे हरतालिका तीज के बारे में। तो हरतालिका तीज पे बात करने के लिए हमारे पास दो गेस्ट आए हैं, जो एक संस्था है BJCA, उससे पधारी हैं नीता कुमारी और श्वेता कुमारी जी। तो पहले तो उनका स्वागत करते हैं। नीता जी, श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण रेडियो पे।
6: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: धन्यवाद रीजा जी।
5: जी, तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानते हैं। नीता जी, आप बताइए कि ये BJCA संस्था क्या है और इनका क्या उद्देश्य है?
6: BJCA एक ऐसी संस्था, एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी संस्था है लेकिन BJCA का मुख्य उद्देश्य ये है।
5: पूरा नाम क्या है BJCA का?
6: बिहार झारखंड महासभा।
5: जी,
6: तो एक्चुअली इसका मेन उद्देश्य ये है ना कि हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं लेकिन वो ना एक्चुअली उस ढंग से पॉजिटिव उसमें काम नहीं कर रही हैं, पॉजिटिव ढंग से। तो हम लोगों को लगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना उनकी प्रॉब्लम, यहाँ तो कुछ कुछ होती है बट यहाँ की प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, इंडिया में ज़्यादा उनको परेशानी होती है जिनके पेरेंट्स हैं। तो हमने ऐसा संस्था बनाया जिसको हमने सोचा कि हम शुरुआत करते हैं लोगों को एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर देके कि अगर उनको इंडिया में ज़रूरत है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो वो उस पर कॉल करे, बताए
5: जी,
6: और उनको वहाँ से हेल्प मिले। और अब ये ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है ना BJCA के अंदर कि लोग को अगर एक भी हेल्प होता है तो उनको ना 10 लोग आ जाते हैं सामने।
5: अच्छा,
6: हेल्प करने के लिए।
5: हाँ।
6: तो ये कल्चर डेवलप हो चुका है BJCA में धीरे धीरे। तो BJCA का एक्चुअली मेन उद्देश्य यही था कि एक लोगों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले और उन्हें जब भी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो 10 लोग उनके साथ हो।
5: बहुत। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि आप बिहार और झारखंड के लोगों को जोड़ना चाहते थे और उसकी संस्कृति को लाना चाहते हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है और अच्छे उद्देश्य से आपने इसको शुरू किया। तो क्या, किस तरह के कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं?
6: BJCA का भी ना पूरा एक साल कंप्लीट हुआ है 9 मई को।
5: अच्छा।
6: और हमारा पहला इवेंट लिट्टी चोखा था जून में, 15 जून के आसपास।
5: मैंने भी अटेंड किया था।
6: जी लास्ट ईयर
5: हमने और सुनील जी ने,
6: तो उसमें 600 लोग आए थे एक महीने के अंदर
5: जी।
6: और इस साल 1000 लोग आए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 25,000 बिहारी हैं।
5: अच्छा
6: जी। तो हम उसमें से 2000 को तो जोड़ चुके हैं अब तक और आगे बाकियों को जोड़ने के लिए हमारी BJCA बहुत काम कर रही है
5: बहुत
6: कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए इसमें।
5: जी नीता जी, आपको बता दें कि सुनील जी भी जो हैं वो बिहार से हैं
6: जी,
5: और मैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मेरी दोस्तें कहती हैं कि आपकी शादी हो गई तो आप भी बिहारी हैं।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और ऐसा भी मानते हैं कि वंस यू आर बिहारी ऑलवेज अभिहारी। तो श्वेता जी आपका क्या कहना है, लिट्टी चोखा का कैसा रहा फेस्टिवल, सक्सेसफुल रहा?
7: लिट्टी चोखा बहुत ही सक्सेसफुल रहा, हमने जितना सोचा था उससे अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिला। सो फिर से मैं बीजेसीए से ही स्टार्ट करना चाहूँगी। बीजेसीए बिहार झारखंड सिडनी चैप्टर जो है हमारा, एक कम्युनिटी तो है ही लेकिन हम लोग के लिए एक परिवार जैसा है। यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं घर से इतने दूर रहते हैं
5: जी।
7: तो एक बड़ा परिवार है जिसमें सब लोग साथ और एक सूत्र में बांधने का एक जरिया है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू हो, चाहे एक सपोर्ट सिस्टम जो नीता जी ने बताया
5: जी।
7: कि इंडिया में रहने वाले हमारे परिवार को सपोर्ट चाहिए या यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, बच्चों को एक जो
8: अपने कल्चर से कनेक्ट,
7: हाँ, कनेक्ट कैसे जी, हो जी। जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि हम तो यहाँ पे आ गए हैं, हमने देखा है कि हम अपने कल्चर में पले बड़े हैं
5: जी।
7: लेकिन वो बच्चों में कैसे लाएं हम, तो एक बहुत ही अच्छा वो प्लेटफॉर्म है या परिवार है जिसमें बच्चे देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हम लोग यहाँ एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं
5: जी।
7: तो इसका मुझे बहुत गर्व है।
5: हाँ।
7: और बहुत,
5: वैसे आप दोनों हैं कहाँ से, श्वेता जी आप कहाँ से हैं भारत में?
7: मैं रांची से हूँ,
5: रांची
7: झारखंड।
5: नीता जी?
8: मैं जमशेदपुर से, वहाँ भी हम अगल बगल से ही।
5: हाँ, बिल्कुल, मैं गई हूँ जमशेदपुर, बहुत ही सुंदर शहर है और बहुत अच्छा लगा मुझे जाके। और मैं भोजपुरी तो नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन गीत मुझे आते हैं भोजपुरी के, गा सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, लेकिन सुनील मजाक बनाते हैं कि अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ।
7: तो
5: बहुत अच्छा लगा था मुझे लिट्टी चोखा का आपका जो फेस्टिवल हुआ था, मुझे बहुत मज़ा आया था। लिट्टी भी बहुत जानदार और शानदार बनी थी और इतने लोगों को, मेरे ख्याल से 1000 लोग थे, आप बता रहे हो, इतने लोगों को इतने अच्छे से संभालना और इतना केयरिंग माहौल था वो, कि किसी, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से भी थे।
7: हाँ बिल्कुल,
5: और
7: पूर्वांचल भी बिहार का ही एक पार्ट है।
5: मैं तो यही मानती हूँ कि पूर्वांचल के लोग भी जो हैं वो एक ही संस्कृति से आते हैं।
7: हमारा खान पान, रहन सहन और जो संस्कृति, जो हम लोग त्यौहार मनाते हैं, काफ़ी सिमिलर सा है बिहार, पूर्वांचल, झारखंड। आई थिंक अगर हम 50 साल 60 साल पहले की बात करें तो साथ में ही थे।
5: तो और हरतालिका तीज की आप बात कर रही हैं, तो हरतालिका तीज भी पूर्वांचल में ही मनाई जाती है, यूपी, बिहार और झारखंड में। तो आइए क्यों ना एक पहले हम गीत सुन लें हरतालिका तीज से ही जुड़ा हुआ, और उसके बाद हरतालिका तीज की चर्चा जारी रखते हैं। धन्यवाद।

0: भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: कितना खूबसूरत गाना था श्रोताओं ये। और आपको बता दें, ये एक नीम करोली बाबा पे फिल्म बनी है, उससे ये गीत लिया गया है। और वेरी अर्थी वॉइस जो कलाकार हैं, और उसमें स्टोरी यही होती है कि भाई पार्वती जी ने जो है वो शिव जी के विवाह के लिए जब अपने पिता को बताया तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि अघोरी थे शिव जी, गले में सांप डाले रहते थे। तो कैसा लगा होगा एक पिता के लिए, हम खुद को सोच के अगर देखें कि ऐसे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा जो है राख मले हुए हैं, भूत प्रेत के साथ रहते हैं। तो और हम तो आज क्वेश्चन करते हैं, अगर बच्चे बोल देते हैं कि भाई यहाँ शादी करना है ये करना है तो 10 बार पूछते हैं, उस ज़माने में सोचिए लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो है वो साक्षात शिव हैं, है ना। और पार्वती जी को तो पता ही था कि भाई वो स्वयं भगवान हैं। तो आइए अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हम बातचीत करते हैं हरतालिका तीज के बारे में। तो श्रोताओं, जैसा कि बताया कि हरतालिका तीज जो है वो महिलाओं के लिए पूर्वांचल में, उत्तर भारत में, बिहार यूपी में बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पार्वती जी ने ये व्रत रखा था और इसी व्रत के प्रताप से और इसी व्रत के पुण्य से उन्हें शिव जी मिले थे और शिव जी के बराबर उनको आसन मिला था। तो चलिए पूछते हैं नीता जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि बताइए हरतालिका तीज को महिलाओं के लिए विशेष पर्व क्यों माना जाता है, इस व्रत और पूजा का महिलाओं के जीवन में क्या महत्व है?
2: एक्चुअली हरतालिका तीज जो है ना वो सुहागिनें औरत ही करती हैं
1: जी।
2: हरतालिका जैसे बाकी तीजें जो होती है वो सब करते हैं जो मैरिड अनमैरिड, बट हरतालिका तीज स्पेशली बिहार में हमने जो देखा है वो सुहाग के लिए ही करती है
1: जी।
2: और ये इतना कठिन पर्व है कि मतलब सच में ये कह सकते हैं कि पति के लिए जो बहुत अपना वो रहता है भाई, नेक्स्ट ऐसा मान्यता है कि अगले जन्म में भी हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, अगले 7 जन्म तक हमारा साथ ऐसा बना रहे
1: जी।
2: इसके लिए महिलाएं 24 घंटा तक बिना कोई पानी पिए, बिना कुछ खाए,
1: निर्जला
2: व्रत रखती है
1: जी।
2: तो इस व्रत का महत्व अपने आप में इतना ज़्यादा है, और निर्जला व्रत रख के माँ गौरी शंकर भगवान का शाम में पूजा करती है
1: जी।
2: तो जैसा कि आपने बोला कि जब माँ गौरी ने अपने पिताजी से ये कहा कि उनको शंकर भगवान से शादी करनी है
1: जी।
2: जो कि बिल्कुल गले में नाग और शरीर पे बबू तो रखते हैं, तो उनके पिताजी को कैसा लगा होगा। तो लेकिन उसमें भी था ना, गौरी माँ को तो शंकर भगवान ही चाहिए थे
1: जी।
2: तो बिना अपने पापा को बताए निकल गई थी, छुप के तपस्या किया इतने साल तक सिर्फ शंकर भगवान को पाने के लिए
1: जी।
2: और बिना अन्न जल का, बिना खाए पिए बरसों तक वो तपस्या करती रही
1: जी।
2: लास्ट में उनको जाके शंकर भगवान ने बोला भाई तुम्हारे जिद के आगे तो मैं भी हार गया तो फिर जाके उन्होंने गौरी माँ को वहाँ पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने उनको उनसे ही मांग लिया कि मुझे तो बस आप चाहिए
1: जी।
2: तो तीज का ये एक मान्यता है कि इसलिए औरतें इतना कष्ट सह के, इतना अपना फास्ट रख के सब ये व्रत करती है कि भाई अगले जन्म में भी मुझे यही चाहिए
1: जी। और इस जन्म में भी उनके वेलबींग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे श्वेता जी? मैं भी ये व्रत करती हूँ श्रोतागण, और आपको बता दूँ वाकई बहुत कठिन है और सूरज को देख के अर्घ देते हैं हम, जैसे एक सूरज से शुरू करते हैं और अगले दिन जब सूर्योदय होता है तब ये व्रत तोड़ा जाता है। तो काफ़ी कठिन है निर्जला रह के। और तो आपका, आप दोनों करते हैं इस व्रत को?
3: जी बिल्कुल।
1: तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है श्वेता जी?
3: तो जैसा नीता जी ने बताया कि क्या इम्पोर्टेंस है इस व्रत का
1: जी।
3: लेकिन हम लोग एक और बात यहाँ जाने कि हरतालिका का मतलब क्या होता है
1: जी।
3: हरतालिका 2 वर्ड से बना है, हरित एंड अलिका
1: जी।
3: हरित इसलिए कि हरित का मतलब है हर के ले जाना।
1: अच्छा।
3: और अलिका का मतलब है सखियाँ। तो हुआ ये था, जब जैसा नीता ने बताया कि वो पार्वती जी माँ गौरी शिव जी से शादी करना चाहती थी, और जब उनके पिताजी को बताया यमवान को तो उन्हें नहीं सही लगा
1: जी।
3: तो उनकी सखियों ने बोला, उनको हर के ले गई वन में, कि तुम शिव की उपासना करो, शिव की तपस्या करो, क्योंकि शिव जब प्रसन्न होते हैं तो कोई भी वर दे देते हैं
1: जी।
3: तो इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। और ये हम भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में करते हैं
1: जी,
3: जो इस साल 14 सितंबर सोमवार को है।
1: अच्छा, शंकर जी के दिन ही पड़ा है।
3: हाँ, बिल्कुल,
1: तो बहुत ही सौभाग्य की बात।
3: सो डेफिनेटली लंबी आयु के लिए, मंगल कामना के लिए, और पति पत्नी का अच्छा साथ प्यार बना रहे और परिवार में खुशहाली रहे, ये होता है
1: जी। तो अब आते हैं कि BJCA का इसमें क्या रोल है। इस बार BJCA की ओर से भक्तों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री तीज पूजा थाली की विशेष व्यवस्था की गई है और तीज पूजा का आयोजन हो रहा है, तो ताकि सभी लोग मिल के एक साथ सामूहिक पूजा कर सकें, तो उस बारे में बताइए कि क्या कार्यक्रम है ये।
3: बिल्कुल, तो मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगी, बैक इन बिहार झारखंड, जब हम बच्चे थे और मम्मियाँ ये करती थी, तो मम्मियाँ डेफिनेटली मोहल्ले में जो सभी आंटियाँ होती थी, सब लोग मिलके तीज का व्रत करते थे।
1: थोड़ा पास आ जाइए।
3: बिहार और झारखंड की एक जो हमारे संस्कृति की खूबी है ना, कोई भी त्यौहार जब हम मनाते हैं सब लोग साथ मिलके मनाते हैं, तो ये त्यौहार एक अकेले परिवार का नहीं होता है, एक समुदाय का हो जाता है।
1: बिल्कुल,
3: तो सब लोग 10-15 लोग साथ मिलके शिवलिंग बनाते थे मिट्टी से और उसकी पूजा करते थे और दूसरे दिन उसको नदी में प्रवाहित करते थे। जब हम लोग यहाँ मिले तो हम नीता और कुछ फ्रेंड्स तो बहुत दिन से साथ में करते हैं, तो
1: अच्छा।
3: उससे एक फेस्टिवल का या माहौल मिलता है कि हम लोग अच्छे से तैयार होके शाम को साथ में पूजा किया, गीत गाया इसके बाद, और दूसरे दिन सुबह फिर जो जो रिचुअल्स होते वो किया। तो पिछले बार जब हमारा BJCA बना तो हमने सोचा, और बहुत लोग हमारे पास आते थे ये क्या कि अच्छा भाभी दीदी या जो भी बोलते हैं कि आप लोग करती हैं, हम लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक BJCA कम्युनिटी के लिए हरितालिका तीज का पूजा साथ में करें
1: जी, जी।
3: जिसमें सभी लोग सम्मिलित हो पाए, एक सिर्फ 10-15 लोग नहीं, और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पिछले बार हमारे यहाँ 100 फैमिली आए। हाँ हाँ
1: जी जी।
3: और पूरे उल्लास के साथ हमने पूजा किया, आरती की, सबने साथ में फोटो वगैरह जो भी ये होता है। तो इस बार हमने सोचा कि ठीक है, हम लोग उससे भी बड़े स्तर पे करेंगे। और जो लोग यहाँ पे कुछ लोग बहुत दिन से रहते हैं, कुछ लोग कम दिन से रहते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं पता पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए
1: जी।
3: या तो उनके सुविधा के लिए जो हमने सोचा कि हम लोग उनकी व्रत की थाली एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दें, जिससे जो व्रती है
1: क्या क्या होता है।
3: सो व्रत की थाली में बेसिकली हल्दी, कुमकुम, सुपारी, बेलपत्र, फूल, पान और जो भी पूजा के लिए चाहिए होता है वो हम व्रत की थाली में अरेंज कराते हैं। सो दैट कि व्रती के लिए वो दीपक, अगरबत्ती, जितनी भी पूजा की सामग्री होती है जो व्रती होती है उनके लिए वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। वो लोग आते हैं और बेसिकली सब लोग फिर साथ में बैठ के पूजा करते हैं। तो ये हमने सोचा कि हम लोग अपनी तरफ से अरेंज कराएंगे तो सबके लिए ये बहुत ही सहूलियत हो जाएगा,
1: सुविधाजनक कर दिया। हाँ, सबके लिए, क्योंकि एक तो ये व्रत बहुत कठिन होता है और सामान को जुटाना, पूजा की तैयारी करना आसान नहीं होता है, और काफ़ी लोग जो है वर्क करते, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़रूर छुट्टी लेती हूँ उस दिन, और लेकिन कुछ लोग वर्क करके इस व्रत को करते हैं, तो उनके लिए तो सहूलियत हो जाएगी कि आप सारी सामग्री तैयार करें, और कथा भी वहाँ होती होगी,
3: कथा पंडित जी आते हैं, कथा होती है। लेकिन ऋचा जी आप यकीन नहीं करेंगी, बहुत सारे लोग जिन्होंने व्रत नहीं किया था वो सिर्फ देखने आए थे।
1: अच्छा,
3: तो उस व्रत में शामिल होने से, अगर आप व्रत ना भी करें और व्रत में शामिल हों, उसका भी अपना
1: बिल्कुल
3: महत्व है।
1: वो तो है ही, और जब आप इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं और इतने अच्छे से कर रहे हैं तो लोगों को देखने में भी अच्छा लगता होगा,
3: वो उल्लास देखने लायक रहती है।
1: हाँ, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि पतियों को आप बुलाते हैं कि नहीं?
3: बिल्कुल, सब पति बच्चे
1: तो उनका क्या रोल रहता है, वो मदद करते हैं?
3: मदद करते हैं, बच्चों को संभालते
2: हैं, एज ए वॉलंटियर वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: क्योंकि हम तो व्रती बैठे रहते हैं ना पूजा के लिए, अब किसी को घी चाहिए, किसी के फूल कम हो गए, किसी के अक्षत कम हो गए, तो वो एज ए वॉलंटियर सबका ध्यान रखते हैं,
1: बहुत अच्छा,
2: किसी को भी ना कमी ना हो पूजा के बीच में ना, तो वो उनके थाली का पूरा ध्यान रखते हैं कि उसमें कुछ कम ना पड़े।
1: और ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी त्योहार जो है ना, और खासकर जब जिसके लिए आप कर रहे हैं पति के लिए, अगर वही शामिल ना हो और हेल्प ना करें तो ये जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये बताइए नीता जी, आपसे पूछते हैं कि हरतालिका तीज केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार, आस्था और समुदाय जुड़ाव का भी पर्व है। BJCA इस कम्युनिटी टुगेदरनेस को किस तरह बढ़ावा देना चाहता है?
2: जी एक्चुअली BJCA इस तरह के इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जैसे ये तीज है एक, और एक छठ का आपको शायद पता होगा बिहार में बहुत बड़ी आस्था है, मतलब उसके लिए लोग ना
1: वो तो अल्टीमेट पर्व है
2: बहुत बहुत। तो ना ये सब हम BJCA से भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे
1: छठ का भी पर्व करते हैं।
2: छठ में हमारे वॉलंटियर्स देखने लायक होते हैं कि किसी को भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई, हमारा ग्रुप है छठ का, अगर वो घंटे दूर भी है ना तो हमारे वॉलेंटियर उनको वो सामान वहाँ पहुँचा के आते हैं।
1: अरे क्या बात है।
2: हाँ, और अगर किन्हीं को जैसे छठ है तो शामिल होना है, मान लीजिए कि छठ तो बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, इनफैक्ट सारे पर्वों से बड़ा पर्व महापर्व है, तो उसमें लोगों को लगता है ना कि हम कहीं भी बस अटेंड कर ले, थोड़ा सा कुछ तो ऐसा करें कि बस अर्घ दे सकें। तो उसमें हम क्या करते हैं ना कि जितने भी व्रती हैं उनसे, मतलब ये तो उनका व्रती का खुद होता है कि भाई हमारा दरवाजा खुला है, जो भी है आ जाओ बस पूजा करने के लिए। तो मतलब ये सब चीज़ें जो BJCA है ना ऑर्गेनाइज ढंग पे करती हैं, लोगों को बताना कि यहाँ छठ हो रहा है, आप यहाँ जा सकते हो, तो ये सब जो एक डेवलप हो रहा है कल्चर ना, जो साथ में आने का, कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तीज में आते हैं लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। लिट्टी चोखा में आते हैं, बहुत लोग यहाँ पे किसी को नहीं जानते हैं लेकिन वहाँ पे आके लोग एक दूसरे से मिलते हैं
1: बहुत।
2: तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब एक हम इसके अंदर करते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा इजी भी हो जाता है कि BJCA के अंदर ये सब चीज़ें हैं, साथ में आए, एक दूसरे से मिले,
1: तो लोग जुड़ना भी चाहते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पहले ज़माने में ये होता था कि हम भारतीय जो हैं या हमारी जो अगली जनरेशन है वो मुख्य त्योहारों को ही जानती थी, जैसे दिवाली, दशहरा, होली, है ना, इन त्योहारों के बारे में ज़्यादा बात होती थी। अब जो ये छोटे छोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं उस बारे में भी, जैसे BJCA ये संस्था है, या अभी मैथिली का कार्यक्रम आ रहा था उसमें मैथिली कल्चर को के बारे में बातचीत हो रही थी, जो मुझे पहले नहीं पता था उतना, लेकिन इन कार्यक्रमों के जरिए आप भारत की संस्कृति को बढ़ावा भी दे रहे हैं और उजागर भी कर रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और मीनिंगफुल त्यौहार हैं ये सब
2: जी।
1: तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद। अब ये बताइए कि कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है ये तीज का फेस्टिवल?
2: तीज का ये फेस्टिवल इस साल 14 सितंबर को हो रहा है
1: जी,
2: और ये मेडिशन ड्यूरल में एक मेडिशन हॉल है, मतलब कम्युनिटी हॉल है
1: जी,
2: वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमने वहीं पे किया था।
1: तो क्या नियम है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप बताइए श्वेता जी।
3: जी तो ज्वाइन करना, बेसिकली हमने क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेवलप किया है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन भर के, तो हमें भी पता हो कितने व्रती आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग नॉन व्रती हैं उनके लिए खाने का अरेंजमेंट या सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, तो हमें भी पता हो कि हमें कितने लोगों को कैटर करना है
1: जी जी।
3: और शाम को बेसिकली व्रती और उनके परिवार वाले आएंगे, और फिर पूजा के बाद जो लोग नॉन व्रती हैं उनके लिए खाने का आयोजन, और इसके बाद तो एक बहुत अच्छी सी परंपरा जो हमारी है, जो पूजा के बाद हम लोग व्रती लोग होते हैं और महिलाएं होती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं।
1: अच्छा।
3: आप शायद जानती होंगी कि बिहारी संस्कृति में जितने भी हमारे पर्व होते हैं उसमें हम लोग नाक से सिंदूर, महिलाएं खासकर नाक से सिंदूर लगाती हैं, और वो बड़ा ही अच्छा दृश्य होता है। इसके बाद सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाना,
1: सब एक जैसे,
3: एक दूसरे को खोइंचा देना, और इसके बाद सबके साथ फोटो खिंचाना। तो
1: खोइंचा के बारे में थोड़ा बताइए, खोइंचा क्या होता है?
3: हाँ, तो खोइंचा का हमारे बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। तो नॉर्मली इसका ये होता है, जब बेटियां घर से जाती हैं
1: जी,
3: और कोई भी बेटियां या बहुएं, तो घर भरा पूरा रहे इसके लिए उनके आंचल में चावल, जिसको अक्षत कहते हैं हम, दूब, हल्दी और थोड़े पैसे डाल के देते हैं कि बेटी का घर भरा पूरा रहे और अपना घर भरा पूरा रहे।
1: थोड़ा सा रख भी लेते हैं,
3: थोड़ा सा रख भी लेते हैं कि हम लोग दे तो रहे हैं लेकिन अपना घर खाली करके नहीं दे रहे, जब तुम दोबारा आओ तो हमारे पास और हो जो तुम्हें और दे सके।
1: कितनी सुंदर परंपरा है देखिए, और भावना कितनी अच्छी है। कई भागों में, देश के अन्य भाग में खोइचा की जगह गोदी भी लोग कहते हैं कि गोदी पूजना है ना, तो एक वही उसका सिग्निफिकेंस है कि आप जो है जिसको दे रहे हैं गोदी या जिसको खोइचा दे रहे हैं उसका भी घर भरा रहे और हमारा घर भी भरा रहे, तो बहुत सुंदर परंपरा है।
3: और सिंदूर लगाना
1: जी,
3: कि तुम्हारा मांग भरा रहे और अपना भी, तो एक दूसरे को सिंदूर, तो सिंदूर हमारे लगाने का ये होता है कि जब एक सुहागन स्त्री को सिंदूर लगाते हैं और वो स्त्री भी आपको सिंदूर लगाती है, मतलब दोनों का सुहाग हमेशा बना रहे।
1: तो नीता जी, नाक से क्यों सिंदूर लगाते हैं?
2: नाक से सिंदूर लगाने की एक्चुअली ये परंपरा है ना, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जितनी लंबी सिंदूर होती है ना,
1: अच्छा,
2: पति की उम्र उतनी लंबी होती
1: क्या
2: है,
1: बात
2: जितना
1: है।
2: हम लंबा सिंदूर लगाते हैं नाक से, इसलिए एक बहुत ही ये हमारे यहाँ शादी में भी हमारा ऐसा होता है ना कि नाक से पहले तो